0: नेपालीहरुको महान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्व एवं नेपाल सम्मतको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण संचालक समिति प्रशासन कर्मचारी चिकित्सक शुभचिन्तक तथा देश विदेशमा रहनुहुने समस्त हाम्रा शुभेच्छुकहरुमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। दाँत मुख र गिजा सफा गरौं, स्वस्थ रहौं, स्वस्थ बनौं। संचालक रामकृष्ण पौडेल, हेल्दी स्माइल डेन्टल केयर परिवार, तिलोत्मा 5 मडिग्राम, रेडियो लुमिनीको ठ्याक्कै अगाडि। साथै हामी कहाँ वरिष्ठ डेन्टल सर्जनहरूद्वारा दाँत मुख तथा गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइन्छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 071-562-593। नेपालीहरुको महान पर्व बड़ा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्मत एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त ग्राहकवर्ग शुभेच्छुक तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। जय दुर्गा कम्प्लेक्स परिवार, तिलोत्तमा 5 मडिग्राम चोक रूपन्देह, प्रोपराइटर टीकाराम भण्डारी, न्यू जय दुर्गा फेन्सी कर्नर, प्रोपराइटर प्रताप भण्डारी, न्यू जय दुर्गा युनिफर्म सेन्टर तथा जय दुर्गा ह्याण्डलुम एण्ड बेबील्याण्ड। सम्पर्क 071-562-269।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व एवं नेपाल सम्बतको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा शेयर सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकार ज्यूहरू, कार्य समिति सदस्यज्यूहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पाण्डे, व्यवस्थापक केशवराज गौतम, मिरमिरे बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, तिलोत्तमा 15 सखुवानी रूपन्देही।
3: साप के काटे में ध्यान देवे वाला बात, साप के काटल इंसान घबराई सकत है तो उ इंसान के हौसला देवा जाए। सांप के काटल इंसान के तुरंत अस्पताल या सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगावा जाए, झाड़ फूक के तरफ न जावा जाए। अपने घर के नजीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है जानकारी रखा जाए। अपने घर के आसपास झाड़ी न रखा जाए और हमेशा वातावरण सफा रखा जाए।
4: अनुरोध है लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, नेपाल।
5: बिमाको महत्व बुझी आफ्नो आवश्यकता बमोजिम बिमा गरौं।
6: आर्थिक सुरक्षा तथा बचतका लागि जीवन बिमा र आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वको लागि निर्जीवन बिमा गरी हुन सक्ने आर्थिक क्षतिबाट सुरक्षित बनौं।
5: साथै बाली, पशु पक्षी तथा जड़ीबुटी बिमाको बिमा शुल्कमा संघीय सरकारबाट 80% सम्म प्राप्त हुने अनुदानको सदुपयोग गरी आजै कृषि बिमा गरौं।
6: बिमा कम्पनीले दिने सेवा तथा दावी भुक्तानी सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ।
5: सम्पर्क ठेगाना कालिका नगर 11 बुटवल रूपन्देही, टेलिफोन नम्बर 071-591-502, मोबाइल नम्बर 98-570-79-501,
6: इमेल info@nia.gov.np।
5: नेपालको बिमा नियमनकारी निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट सर्वसाधारणमा जारी सन्देश।
7: यसो बिहे पार्टीमा हेर्यो, सबैका बुढी झपक्क गहनामा सजिएर आउने। मेरी बुढीलाई पनि यसपालि 100 गहना बनाइदिनु पर्यो भनेको, कहाँ बनाइदिने होला?
8: दाँतको सामान्य उपचारदेखि जटिल दन्त उपचारसम्म अब एउटै विश्वासिलो गन्तव्य डर्माडेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर।
9: डर्माडेन्टमा उपलब्ध छ सम्पूर्ण दन्त उपचार सेवा, नियमित दाँत जाँच, स्केलिङ तथा पोलिसिङ, फिलिङ, रुट क्यानल, दाँत निकाल्ने, डेन्टल इम्प्लान्टदेखि आकर्षक मुस्कानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपचार अनुभवी दन्त चिकित्सकबाट।
8: दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि
10: आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
11: डर्माडेन्ट नेपाल हेयर ट्रान्सप्लान्ट स्किन एन्ड एस्थेटिक डेन्टल क्लिनिक एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर पाटन हस्पिटल रोड लगनखेल। सम्पर्क 01 54 54 66 वाट्सएप 98 65 44 24 96।

0: पत्रकारको कामको सम्मान गरौं, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौं।
1: ए दिलकुमारी, आज त काम गर्ने जाँगरै छैन।
2: हो भाइ, आज मलाई पनि काम गर्ने जाँगरै छैन।
3: ओ दिलकुमारी सुन्तली, के गरेको यो पाराले काम त गराइ हुँदैन।
2: ठेकदार साहब, हामी काम गरेका छौँ, उत्ति नै मेहनत गरेका छौँ, तर पनि हाम्रो ज्याला हरिदाईको भन्दा कम नै छ। ठेकदार साहब, हामीसँग पनि समान व्यवहार गर्नुहोस्।
4: कहीँ हामी पनि श्रमको मूल्यमा यस्तै भेदभाव गरिरहेका त छैनौ। लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरौ।
5: सामाजिक जनचेतनाका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका र रेडियो लुम्बिनी एवं तिलोत्तमा टेलिभिजन मणिग्राम रूपन्देही।
6: नमस्ते है, नमस्ते। होइन बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै?
7: के हुनु नर्स नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी, सासु सालको मेसो खोज्दै छौ क्या?
6: आहा, यो हो नि तरिका सासु ससुराको। हो त, पेटमा बच्चा बसेदेखि दुई वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाइका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
8: लौ, ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो। के गर्नुपर्छ भनिदिउँ त नानी?
6: ल, यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त।
9: माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा, माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा।
10: अनि फलफुल र सागपात, बच्चाको खाना साथ साथ
11: सबै मिलाइ खुवाऊ।
10: कम्तीमा दुई वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो, मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि छ महिना पुरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा, माछा मासु, हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
12: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई दुई पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ।
13: हो, यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने, अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि? आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्युट्रिसन परियोजना तथा कृष्णसार एफएमद्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।
14: नमस्कार हो नमस्कार नाई, यी बुढौती में बुढा बुढी का बात कैल जाता? अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई होई जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
15: देख, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
14: ठीक बा, सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
16: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
14: फल फूल और सागपात बच्चा के खाना साथ साथ
15: सब मिल के खियावल जाए,
14: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति छह महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोस, हरियर सागपात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
15: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे दुई जवा बेसी देवल जाए।
14: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने?
15: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही एफएम द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
17: तिलोत्तमाको मणिग्राममा सुविधा सम्पन्न हाइटेक ल्याब, सबै खाले स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण छिटो छरितो र समयमै उपलब्ध गराइने, एफडीएद्वारा मान्यता प्राप्त मेसिनहरूको